सो इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप हैं और हम और आप मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी आज रेडियो ब्रिस्वानी पर। देखिए गणपति बप्पा जो हैं वो यूं तो 10 दिनों के लिए आपके घरों में आते हैं, आप उन्हें लेकर आते हैं गाजे बाजे के साथ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गणपति जी को 10 दिनों के बाद पितृ पक्ष शुरू होने से पहले आपको विसर्जित करना होता है। अब जरूरी तो नहीं है, आजकल सब भी वर्किंग है, तो 10 दिन बप्पा को घर में रखना मतलब जब बप्पा घर में होते हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, एक ना एक व्यक्ति को हमेशा उनके साथ रहना होता है, एक ना एक इंसान उसे बैठकर ये तो भजन गाए या बातें करे या बैठा रहे, तो आपको सेवा करनी होती है उनकी। अब वर्किंग लोगों के साथ में आजकल ये पॉसिबल नहीं है, तो जितनी जिसकी मंशा होती है, जितना जिसका मन होता है, फिर चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो या फिर 10 दिन तक हो, लोग उन्हें रखते हैं अपने घर में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों में ही, जगह जगह इंडिया में इस वक्त जो है बहुत बहुत बड़ी मूर्तियां पंडाल में पहुंचती हैं, ताकि जो लोग घर नहीं ला पाए हैं या घर लाए भी हैं उसके बाद भी वो पंडाल में जाकर गणेश जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बप्पा की कृपा प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी इस वक्त इंडिया में जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सो आप अगर गणेश जी को ला रहे हैं तो कितने दिन रखने की सोच रहे हैं हमें बताइएगा जरूर। आइए एक अगले ट्रैक को हमारे साथ सुनिए और यूं ही सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रही जो

ठापन सुन रहे हैं आप मेरे साथ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। गणेश चतुर्थी है आज और इसी फेस्टिवल पर आज आपसे बात हो रही है। देखिए, जो लोग गणेश जी को घर ला रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए, गणेश जी की प्रतिमा को सीधे जो है उनके सिंहासन पर स्थापित नहीं किया जाता है। जैसे भी आपने उनका स्थान बनाया है, क्योंकि मंदिर से अलग उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह लोग बनाते हैं, तो आप उन्हें कैसे स्थापित कर रहे हैं इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले उनकी मूर्ति के नीचे आपको चावल रखने होते हैं, जिन्हें अक्षत कहते हैं। अक्षत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चावल जो होते हैं, जो पूजा में यूज चावल होते हैं, उन्हें खंडित नहीं होना चाहिए, यानी उन्हें टूटा नहीं होना चाहिए। तो एक एक चावल को ध्यान से चुनकर, जो बप्पा के नीचे रखा जाने वाला है मूर्ति के, उसको देखिए और अक्षत वाले चावल जो है, अक्षत कहते ही हैं बेसिकली चावल को, तो बिना टूटे चावल आप रखें, ये बहुत शुभ माने जाते हैं, और उसके ऊपर बप्पा की मूर्ति स्थापित करें। ठीक है जी, आइए एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

गणपति जी को हमेशा अपने घर लाते हैं ना, उनके लिए उनकी मूर्ति को लेकर भी बड़ा क्रेज होता है कि नहीं नहीं ये पापा की मूर्ति तो हम पिछले साल लेकर गए थे, इस स्टाइल की मूर्ति हम ले चुके हैं, या हम ये वाली लेंगे। अरे भाई आप जाकर देखिए मार्केट में, वो क्रेज आपको इस वक्त देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब मूर्ति लाने को लेकर महंगा सस्ता ये सब लोग नहीं देखते, लोग उनका स्टाइल देखते हैं, खड़े पप्पा यानी कि जल्दी जाएंगे घर से, हमें तो बैठाने वाले चाहिए। तो हर किसी की मंशा, हर किसी की भक्ति जो है, हर किसी की श्रद्धा जो है वो इस फेस्टिवल के साथ जुड़ी है। तो चलिए इस फेस्टिवल को हम आगे लेकर चलते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे साथ इट हैपेंस।

गणपति जी को घर लाने का मतलब है उन्हें भोग लगाना। किसी शरारती बच्चे जैसे नहीं लगते आपको गणेश जी? मुझे तो हमेशा लगते हैं। और गणपति जी को लड्डू और मोदक बहुत पसंद है, तो अगर आप भी गणपति जी को घर ला रहे हैं तो मोदक और लड्डू का इंतजाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनके बिना उनको कहाँ समझ में आता है किसी के घर पे रहना, है ना जी? तो ख्याल रखिए। और बप्पा को मोदक, देखिए शुरुआत जो हुई थी मोदक बनते थे चावल के आटे के, है ना, लेकिन अब जो है वो मोदक बनते हैं मेवा के, यानी कि ड्राई फ्रूट्स को डाल करके खोए के साथ मेवा मिला के, और भाई तो मॉडर्न ज़माना है, चॉकलेट मोदक भी बनने शुरू हो गए हैं। मोदक का स्ट्रक्चर जो है, उसे कैसे स्ट्रक्चर देना है, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है, सो ज़रूर ट्राई कीजिए। और नहीं ला पा रहे हैं तो मार्केट से तो ज़रूर लेकर खाइए, मोदक का टेस्ट भी बड़ा लाजवाब होता है। बापा को प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्पानी और बने रहिए इट हैपेंस में।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

हिटहपन से सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर आज गणपति पूजा को, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। जी हाँ, और आज इस बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। गणेश जी को धूप बड़ी प्रिय है। धूप कैसी होती है? घास होती है बेसिकली, जिसके दो मुंह होते हैं। हाँ, और बड़ी ही शुभ मानी जाती है। तो अगर आप गणेश जी की प्रतिमा को घर ला रहे हैं, या आज अपने मंदिर में ही आप उनकी पूजा कर रहे हैं, या आप पंडाल में जाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप धूप को जो है उन्हें समर्पित करें। उन्हें बड़ा प्यार है। जितना प्यार उन्हें लड्डू और मोदक से है, उन्हें उतना ही प्यार धूप से भी है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि सिंदूर भी चढ़ता है गणेश जी को, तो आप सारी चीजों को अच्छे से समर्पित करें उन्हें, और देखें फिर उनकी कृपा आप पर कैसे बरसती है। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए। इट हैपेंस।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर हमारा आपके साथ साथ, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा। और गणेश चतुर्थी जो है वो आप सबके जीवन में एक बहार की तरह आए। गणपति बप्पा आपके सभी विघ्नों को हरें, और जब वो जाएं तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी देकर जाएं, एक अपना आशीर्वाद देकर जाएं और सभी की जिंदगी में खुशियां देकर जाएं। गणपति विसर्जन के दिन हम फिर से आपसे गणपति जी की बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अब आज के सफर से, हमारे इस गणेश चतुर्थी स्पेशल इट हैपेंस से मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और एक बार फिर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया है ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इस नू तैयार किया। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number. Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तों 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन दे अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तों रवाना हुंदे सीगे।

0: reach. The big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

फायर एंट्स तुहाड़े इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाड़े घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: 9999. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi, this is Salman Khan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, jise janna achha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
10: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आएगा।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

कैसे हूँ आप सब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हैप्पी मंडे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा मंडे और हैप्पी दोनों एक साथ एक लाइन में कैसे आ सकते हैं। वेल ऑफ कोर्स आ सकते हैं अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप खुद बॉस हो और आप खुद अपने सक्सेस के लिए बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हो, फिर आपको मंडे अच्छा लग सकता है। क्योंकि बॉसेस को मंडे बहुत अच्छा लगता है, बॉसेस को तो ऐसा लगता है कि वीकेंड होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, सो या अगर आप भी खुद बॉस हो तो ऑफकोर्स हैप्पी मंडे। और अगर

एम्प्लॉय हो, अगर आप कॉरपोरेट मजदूर हो तो ठीक है, थोड़ा ठीक ठीक वाला मंडे। जी हाँ, इसी के साथ आइए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आपको पता ही है, इवनिंग वाइब शुरू हो रहा है। और इवनिंग वाइब कैसे शुरू होता है? वेल ऑफ कोर्स अच्छे गानों के साथ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए तो प्ले करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्दी रिचुअल हम प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में, उनके साथ कीप अप करना, अपने बॉसेस के साथ कीप अप करना, अपने टीम लीड्स के साथ कीप अप करना, अपने क्लाइंट्स के साथ कीप अप करना, और ऊपर से अपनी बाकी की लाइफ को भी एकदम एकदम जोड़कर रखना, कितनी सारी चीजें होती हैं। सो वी नीड समथिंग जो कि हमें इमोशनली साइकोलॉजिकली हेल्थी रखे एंड फिजिकली भी। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सरसाइज। सो आइए करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरू करते हैं प्रोग्राम को एक ऐसे गाने के साथ जो मेरे लिसनर्स का बहुत ही ज्यादा मन पसंदीदा रहा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता मैं कौन से वाले गाने के बारे में बात कर रही हूं, तो आपको ये गाना जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस गाने का नाम है आई नहीं, और ये है स्त्री टू का गाना। स्त्री टू का गाना इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जब ये मूवी आई थी तो ये गाना जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। वेल ऑफ कोर्स इसके और गाने भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, और आज की रात वाला जो सॉन्ग था वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बट ये गाना इतना मजेदार, इतना फन है, मतलब आपको लगेगा फक क्या ही गाना बना दिया है। सबसे पहले जब आप इसे सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओह क्या ही चल रहा है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है। बट देन जब आप इस पे वाइब करना शुरू करोगे, धीरे धीरे धीरे ये टेक ओवर कर लेगा आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, एंड इट्स गोना रूल, इट्स गोना मेक यू वाइब विद इट। सो आइए सुनते हैं आई नहीं सबसे पहले, और फिर करते और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, रसिक के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, मतलब अब जाने का वक्त हो गया है सीधा मौसम की तरफ, क्योंकि मौसम की जानकारी जरूरी है भाई। कैसा रहने वाला है आज का मौसम, ये तो कहीं ना कहीं आपको पता था पहले भी, और आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कुछ टाइम में, लेकिन अगले दो दिन क्या हाल होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आज की बात, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील आपको हो रहा है 21.9 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, दिन की बात तो हो गई, लेकिन रात की अगर की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे मैंने पहले ही कहा था, एकदम खिलखिलाता हुआ सूरज आपको दिखने वाला है और एयर क्वालिटी भी है एकदम फेयर। जी हाँ, मंडे की बात हो गई तो ट्यूजडे और वेडनेसडे की बात की जाए, ट्यूजडे यानी कल भी ऐसा ही खिलखिलाता हुआ मौसम जो है वो रहने वाला है। और खिलखिलाने से मेरा मतलब है कि अब क्योंकि ऐसा सर्दी तो बची नहीं है, स्प्रिंग है, एंड दैट टू लेट स्प्रिंग है, सो 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब फिर से जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहां पर, और 5% चांसेस, मतलब नो चांसेस ऑफ बारिश मुझे यहां पर दिख रहे हैं। एंड इसी के साथ वेडनेसडे को थोड़ी क्लाउडी सिचुएशन हो सकती है, 30% चांसेस भी हैं बारिश के, और 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। मतलब कल के मुकाबले परसों वेडनेसडे को टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आप देख पाएंगे, क्योंकि बारिश और बादल प्रिडिक्ट किए गए हैं। इसके अलावा क्या हो पाएगा, सच में बारिश हो पाएगी थोड़ी बहुत, सच में बादल आ पाएंगे, ये हमें पता चलेगा कल, लेकिन अभी के लिए ये है मौसम का हाल। अब जरा चलते हैं हम भी अपनी चाल और आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना मेरी तरफ से।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों आज क्या दिन है? मंडे। वेल मंडे है तो मतलब इवनिंग वाइब, और इवनिंग वाइब है तो मतलब ऑफ कोर्स आपकी फरमाइशें हैं। मतलब ये प्रोग्राम में आप अपने फेवरेट गाने रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो एंड किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो, एंड वी आर गना हेल्प यू विद दैट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, और नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही जबरदस्त सा गाना आप

दोस्तों इसी के साथ आप सुन रहे हैं बस दोस्तों एक और चीज जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, तो अभी दुबई में एक मैच होके हटा है, क्रिकेट मैच, और एशिया कप का फाइनल हुआ। सो अगेन 13th टाइम एशियन कप जो है वो टाइटल होल्डर बन गए हैं, जो विमेन टीम है, क्रिकेट टीम है इंडिया की, उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया। और ये मैच जो है वो बहुत रिजल्ट जो है वो हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट ये है कि जब ट्रॉफी देने के लिए आईसीसी के एक प्रेसिडेंट ही आप कह सकते हो, नॉट द मेन प्रेसिडेंट बट हाँ एक छोटा वाला प्रेसिडेंट जो कि है मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं बेसिकली, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो विवाद है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद रखा हुआ है इंडिया के लिए, और यहां पर मोहसिन नकवी क्योंकि आते हैं पाकिस्तान से, तो पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडियन टीम ने, मेंस टीम ने जो है उनसे ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया था, और इस बार जो विमेन टीम है उन्होंने उनसे वो जो ट्रॉफी है वो लेने से मना कर दिया है। या दैट्स व्हाट हैपेंड अगेन। आप लोग बोलोगे कि नहीं यार, क्रिकेट को या फिर स्पोर्ट्स को ना स्पोर्ट्स जैसा रखना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। वेल ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स जैसा रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देयर आर मेनी पीपल जो कि इस चीज को अपने दिल से लगाते हैं कि ओके, मतलब एक कंट्री जो कि हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक कराती है और उसकी वजह से हमारे लोग सफर करते हैं, हम वहां के किसी भी बंदे से ट्रॉफी क्यों ले। That's not me saying. जी हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ ये, but the thing is कि they think like that. जी हाँ, that is the reason कि पहले भी मोहसिन नकवी से उन्होंने नहीं ली थी ट्रॉफी और इस बार भी उन्होंने नहीं ली है ट्रॉफी। मतलब of course पहले मैं पैर फोड़ते हुए जो है वो ग्राउंड से बाहर जाते हुए दिखे अगेन। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मोहसिन नकवी के अलावा कोई और है नहीं क्या। मतलब ऑफ कोर्स अगर उन्हें पता है कि इंडियन टीम जो है वो जीत गई है तो आईसीसी में कोई और भी तो होना चाहिए, यू नो आईसीसी की इतनी बड़ी अथॉरिटी है, किसी और के हाथ से दिलवा दो, वाह मोहसिन नकवी। अगेन जो वुमेन टीम है उन्होंने लेने से मना कर दिया ट्रॉफी की, ठीक है हम जीत चुके हैं लेकिन हमको ट्रॉफी चाहिए लेकिन इस इंसान के हाथ से नहीं चाहिए, सो यू बेटर सेंड समवन एल्स और just do something else. Yeah, that's what women team said. By the way, Harmanpreet, Captain Harmanpreet ki lead ki hui is team ne zabardast tarike se Asia Cup jeet liya hai, and congratulations to Team India. Yeah, again congratulations because you played well. The great. Ji haan, iske sath yahan par ek aur gana aap sab ke liye meri taraf se.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। दोस्तों, एक बहुत ही फनी चीज जो है वो इंटरनेट पर यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और वो है सैमसंग का एक एड कैंपेन जिसमें उन्होंने टिम कुक, जी हाँ, द फॉर्मर CEO ऑफ एप्पल का लुक लाइक बंदा जो है उन्होंने उस एड कैंपेन में लिया है, और उनसे वो अपना गैलेक्सी Z Fold 8 प्रमोट करा रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोचिए कि आप एप्पल यूजर हैं या फिर आप एप्पल यूजर बनना चाहते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप जाते हैं सैमसंग के जी हाँ, जो है शोरूम में, मतलब आप पहले एप्पल यूजर रहे हैं और अब आप सैमसंग का फोन जो है वो लेना चाहते हैं, और आप सैमसंग के स्टोर में एंटर करते हैं, और आप सैमसंग के स्टोर में एंटर करते हुए ही देखते हैं एक बहुत ही बड़ी तस्वीर, जो कि बंदा जिस तस्वीर में दिख रहा है वो बिल्कुल टिम कुक की तरह दिख रहा है, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल सीईओ ऑफ एप्पल, जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही रिटायर हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को साइड किया है और जॉन टर्नस ने वो वाला जो कमान है वो संभाली है, वो वाला पद जो है वो संभाला है। अब आप सैमसंग के स्टोर में घुसते हैं और आप देखते हैं वो एड कैंपेन जिसमें टिम कुक जैसा दिखने वाला बंदा जो है वो गैलेक्सी जी फोल्ड 8 को प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग बोलोगे कि ओ माई गॉड, मतलब एक्स सीईओ ऑफ एप्पल इज प्रमोटिंग सैमसंग का फोन नाउ, लाइक दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लाइक पैसा बहुत सारा। वेल, ऐसा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। टिम कुक इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन एप्पल कंपनी, सो इट्स नॉट जस्ट द सीईओ वाला उनका रोल, बट ऑफकोर्स ही इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। और उनकी उम्र अगर नहीं हो रही होती तो एप्पल शायद उनको हटाता भी ना अभी, लेकिन ऑफकोर्स उनकी उम्र होने की वजह से और नई कमान जो है, नए लोगों को जो है वो कमान देने के लिए, उनको जो है वो लीडर बनाने के लिए जॉन टर्नस को वहां पर लाया गया और इसलिए टिम कुक को हटाया गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि टिम कुक जैसा देखने वाला बंदे को ढूंढ के, एंड गेस व्हाट द फनी थिंग इज कि टिम कुक जैसा बंदा दिखता ही नहीं है, उसका नाम भी टिम कुक है। मतलब एक बंदा जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, जो टिम कुक रहता है और उसका नाम भी टिम कुक है, उसको सैमसंग लेकर आता है, अपने एड कैंपेन में लेता है ताकि वो उसका गैलेक्सी जी फोल्ड 8 जो है वो प्रमोट कर सके। वाह, मतलब ये हिलेरियस कोइंसिडेंस है या एकदम खतरनाक सी स्ट्रेटेजी है? मतलब सैमसंग ने ऐसे बंदे को ढूंढा कहां विद सेम, ऑलमोस्ट सेम शक्ल एंड सेम नेम? हाउ इन द वर्ल्ड कैन इट हैपन? जी हाँ, और अगर आपने ये नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिए, आप भी हंस हंस के गिर जाएंगे, क्योंकि जब पहली बार मैंने देखा था आई वॉज लाइक वाओ, आई मीन सैमसंग जो है अभी तक रोस्ट तो कर ही रहा था। और आपको तो पता ही, अभी कुछ दिन से एप्पल जो है वो फिर से बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो नया फोल्डेबल फोन जो है वो लॉन्च किया है। अब लोग जो है वो बहुत कुछ कह रहे हैं, सैमसंग की बड़ाई हो रही है कि सैमसंग इतने टाइम से बना रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे नया ही एड कैंपेन ला दिया कि भाई टिम कुक से करवाएंगे हम, अरे असली नहीं तो नकली ही सही। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

नैना तो दगाबाज है ही, लेकिन हमारा दिमाग भी बहुत ज्यादा दगाबाज है। जी हाँ, और ये मैं किनको कह रही हूँ? उन लोगों को जिनको अपना ही काम खराब करना है, मतलब इंसानों का भेजा हिल गया था इसलिए उन्होंने एआई और रोबोट्स बना दिया। मैं तो इस बात से पूरी तरह अग्री करूंगी। मतलब सिर्फ एक फील्ड है और वो है मेडिकल फील्ड, उसके अलावा किसी भी और फील्ड के लिए रोबोट्स या एआई बनाना इज बेवकूफी एंड दैट्स इट, हैंड्स डाउन दैट्स इट। मतलब या पीरियड, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। वेल ऑफकोर्स मुझे कुछ कहना है, पर ये वाले सेंटेंस में मुझे कुछ और नहीं कहना है। मैं इसलिए कह रही हूं कि हमने देखा है कि ये चीज जो है वो हमें ही परेशान कर। एंड कैन यू इमेजिन एंथ्रोपिक? जी हाँ, एंथ्रोपिक से एक बहुत ही बड़े डेवलपर ने अभी रिजाइन किया और उसके बाद वो पॉडकास्ट पे जा रहे हैं और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने रिजाइन क्यों किया इतनी बड़ी कंपनी से, इतनी बड़ी पोस्ट से, तो ही इज लाइक, यू नो व्हाट, 10 साल में एआई पूरी तरह से ह्यूमन काइंड को, ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या कैपेबिलिटी है उनमें। जी हाँ, तो जब उनसे पूछा गया कि अगर ऐसा ही है तो आपने बनाया ही क्यों, मतलब क्यों बनाया आपने एआई को, कहते हम जब इसे बना रहे थे तो हमें लगा था कि ऑफ कोर्स हम इससे हेल्प करेंगे, हम इससे ऐसे रिसोर्सेज बनाएंगे जो कि लिटरली ह्यूमंस को हेल्प करने वाले हैं। लेकिन जैसे हम जा रहे हैं आगे, मुझे समझ आ गया है कि एआई जो है वो खत्म कर देगा ह्यूमंस को 10 सालों में। जी हाँ, अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई और ये सच में होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है। जी हाँ, इससे पहले जो कि फादर ऑफ एआई माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था, जब उन्होंने क्विट किया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो लिटरली यू आर द यू नो पायनियर इन दिस फील्ड, व्हाई डिड यू स्टॉप? तो ही वॉज लाइक, यू नो वॉट, आई न्यू, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगा था बिकॉज आई एम गोना डू समथिंग रियली रियली ग्रेट, मतलब मैं किसी ग्रेटनेस का हिस्सा जो है वो बन रहा हूं। बट देन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये चीज हम खुद के लिए ही बर्बादी पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, दैट्स व्हाट द फादर ऑफ एआई सेड, द पर्सन हु स्टार्टेड इट ऑल। उन्होंने क्विट कर दिया है, लेकिन बाकी बेवकूफ लोग क्विट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, सो आप खुद सोचिए कि एंथ्रोपिक के जो ये बहुत ही बड़े डेवलपर है जिन्होंने अभी क्विट किया है, ही इज लाइक 10 साल में एआई कैन लिटरली डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स। जी आप खुद ही सोचिए, मतलब चैट जीपीटी का जो जीपीटी अस्त्रा उन्होंने मॉडल लॉन्च किया, अगर हम उसी की बात करें तो वो मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल है जिसे खुद चैट और एआई बोट्स ने बनाया, मतलब उसे ह्यूमंस ने नहीं बनाया, और वो इस लेवल का एआई बोट है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड दैट्स द नेम अस्त्रा। जी हाँ, द नेम इज अस्त्रा। एंड व्हाई डिड दे नेम इट अस्त्रा? वेल, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इफ यू नो एनीथिंग अबाउट माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, यू वुड नो व्हाई डिड दे कॉल इट अस्त्रा। ऑल्दो उनका जो है वो यू नो एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो सकती है कि उन्होंने अस्त्रा इसलिए रखा, वैसा रखा, वैसा रखा, बट द थिंग इज कि अस्त्रा इज अ वेपन दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर मेकिंग, अ वेपन दैट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। बट लेट्स सी, लेट्स सी कहां जाता है और क्या रोकते हैं लोग इसे या नहीं। जी हाँ, आई थिंक द वन थिंग वी नीड इज राइट नाउ इज कि हमें कुछ ऐसा एआई चाहिए जो एआई को ही बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, ताकि अगर एआई कभी पागल हो जाए और ह्यूमंस के हाथ से निकलने की कोशिश करे तो एटलीस्ट वी हैव टू हैव अ वेपन जो कि उस चीज को संभाल पाए। जी हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ आइडिया जो कि आपको लिटरली बहुत ज्यादा आगे ले जा सकता है, मुझे लगता है कि आपको एक ऐसे एआई पे काम करना चाहिए जो कि बाकी एआई को रोक सके गड़बड़ करने से। जी हाँ, अगर आप वो बना लोगे ना, उसी की डिमांड होने वाली आगे जाके बहुत अच्छे से, मैं आपको बता रही हूं, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। जी हाँ, इसके साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio ब्रिसवानी, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: To everyone tuning into Radio ब्रिसवानी, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है मिस्टर आयुष्मान खुराना को बर्थडे विश करने का. वेल ऑफ कोर्स हम सबके फेवरेट आयुष्मान खुराना, मतलब कौन से टाइप का कैरेक्टर है जो ये बंदा प्ले नहीं कर सकता है, कौन से टाइप का गाना है जो ये गा नहीं सकता है, कैसी एंकरिंग है जो ये कर नहीं सकता है. वेल, ही इज अ एक्टर, ही इज अ सिंगर एंड ही इज अ वेरी वेरी वेरी गुड होस्ट और एंकर. जी हाँ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगर, एक्टिंग, एंकरिंग क्या क्या नहीं करा सकते हो आप इस इंसान से. और ये इंसान एक बहुत ही जबरदस्त रेडियो होस्ट भी रहा है. जी हाँ, मतलब ऑफकोर्स आई एम अ रेडियो होस्ट, सो ऑफकोर्स आई नो कि किस इंडस्ट्री से मिस्टर आयुष्मान खुराना आए हैं. सबसे पहले ये रेडियो होस्ट ही थे, उसके बाद इन्होंने एंकरिंग में जो है वो जाने का फैसला किया और वहां पर एक्सेल किया. पहले रेडियो होस्ट की तरह एक्सेल किया, फिर एंकरिंग में एक्सेल किया, किया, फिर उसके बाद सिंगिंग में एक्सेल किया, और उसके बाद मतलब एक्टिंग और सिंगिंग दोनों कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकता ये बंदा। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मिस्टर आयुष्मान खुराना, आपको हमारी तरफ से एंड रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से। और थोड़ा टैलेंट ना बाकी लोगों में भी बांट दीजिए, मतलब सारा टैलेंट खुद में ही रख के क्या करना है आपको। जी हाँ, सो हम यही दुआ करते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, खुशनुमा रहे, और आप हेल्दी रहे, आपकी फैमिली हेल्दी रहे, वेल्थ भी ऐसे ही आती रहे जैसे आ रही है, क्योंकि वेल्थ की कमी नहीं है इतना तो मुझे पता है। और ऐसे ही जबरदस्त मूवीज और लीग से हटकर मूवीज आप करते रहे, और वो जबरदस्त सा अभिनय हमें दिखाते रहे, अपने फैंस को दिखाते रहे, यही हम कामना करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना जो कि आयुष्मान खुराना का ही है, उन्हीं की मूवी का है, बरेली की बर्फी का, अगर आपने नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। ये है गाना नज्म नज्म, उन्हीं का।

जी हाँ दोस्तों, और एक और भी बहुत ही फनी चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले एप्पल का जो लॉन्च था उसकी सुर्खियां तो देख ही ली होंगी। जी हाँ, उसकी हाइलाइट्स आपने देख ही ली होंगी, क्योंकि कौन इंसान है इस दुनिया पे जिसने वो लॉन्च की हाइलाइट्स नहीं देखी है। मतलब ऑफकोर्स इसके प्राइस के बारे में बात हो रही थी, सब चीजों के बारे में बात हो रही थी, बट एक चीज है जो बहुत ही फनी है और इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इनकेस आपने नहीं सुना है उसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इट्स अ वेरी फनी एंड यू नो दिलचस्प फैक्ट अबाउट एप्पल का जो नया फोन है, एप्पल ड्यूओ। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि एप्पल का नया फोन जो है, जो आईफोन फोल्डेबल आईफोन है, वो आ गया है और उसका नाम उन्होंने एप्पल ड्यूओ रखा है। और इसी की वजह से ड्यूलिंगो भी उनका मजाक उड़ा रहा था कि पहले तो तुम सैमसंग को कॉपी करते थे या कुछ और करने की कोशिश करते थे, अब तुम हमें भी कॉपी कर रहे हो। मतलब तुमने हमारा ड्यूलिंगो से ड्यूओ ही उड़ा लिया, मतलब तुम हमारा आधी चीज ही उड़ा के ले गए। जी हाँ, वेल ऑफकोर्स एप्पल कभी भी नहीं मानेगा कि उन्होंने किसी का कुछ उड़ाया, सो एप्पल बीइंग एप्पल वो उन्होंने कुछ भी नहीं माना। बट हियर आई एम गोना टॉक अबाउट वो जो नया फोन है उसकी कॉस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि $2,000 से वो शुरू होने वाला है, मतलब $2,000 से वो शुरू होने वाला है और उसकी कॉस्ट जो है वो $3,000 तक जाने वाली है। और अगेन, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर ये फोन काफी महंगा होने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि अपेरेंटली टर्की में रहने वाले लोग उस सेम आईफोन के लिए पे करने वाले हैं कितना, ऑलमोस्ट $4,000। जी आप लोग बोलोगे कि हाउ, वेल ऑफकोर्स ये बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बट टैक्सेस एंड एवरीथिंग, और इस वजह से टैक्सी टर्की को जो है वो सबसे ज्यादा महंगा ये आईफोन पड़ने वाला है। बट यहां पर मैं बात करने वाली हूं इसकी स्क्रीन की, जो कि सैमसंग से उन्हें मिली है। आप लोग बोलोगे कि वॉट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, या दैट्स ट्रू एंड द फनी थिंग इज कि एवरी एप्पल ड्यूओ दैट गेट सोल्ड उस पे $250 जो है वो सैमसंग कमाने वाला है। आप लोग बोलोगे कि क्या चल क्या रहा है, वेल वो जो आईफोन ड्यूओ की जो स्क्रीन है वो अपेरेंटली एप्पल की खुद की है ही नहीं, वो सैमसंग से ले रहे हैं और सैमसंग को उन्हें पे करना पड़ेगा $250 ऑन एवरी आईफोन जो कि बिकता है। अब आप लोग बोलोगे एलो जी, ऐसा कह रहे थे कि इना दी सी इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो इनकी थी, या ये कह तो यही रहे थे, लेकिन इनकी तो स्क्रीन भी खुद की नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। जी एंड अपेरेंटली जो कैमरा ये लगाते हैं वो ये सोनी से लेते हैं, सो आईफोन का खुद का कुछ है भी, वेल आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। इतना ज्यादा मजाक उड़वा लिया, ऐसे बोल दिया कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया, हमने आईफोन ड्यूओ ले आए हैं। अरे भाई, तुम तो स्क्रीन भी सैमसंग से ले रहे हो, तो तुम्हारा खुद का है क्या? जी हाँ, तो एप्पल ने सोचा कि खुद की स्क्रीन बनाना जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहेगा, तो इससे अच्छा है जो सैमसंग की ही स्क्रीन ले लेते हैं। बट जो सैमसंग अपने फोल्डेबल फोन में स्क्रीन यूज करता है, अपेरेंटली वो वाली स्क्रीन एप्पल नहीं ले रहा है, एप्पल कोई और स्क्रीन ले रहा है। सो या द अपडेट इज कि $250 जो है वो सैमसंग कमाने वाला है ऑन एवरी आईफोन ड्यूओ। क्या बात है सैमसंग, मतलब मैं तुमको मान गई हूं यार। सैमसंग वालों ने बाय द वे मुझे कोई पैसे नहीं दिए उनको प्रमोट करने के, आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट द थिंग इज कि मतलब क्या चल गया रहा है ये मार्केट में, बताते कुछ और है, करते कुछ और है पर्दे के पीछे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, मस्ती मखोल तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सीरियस चीजों के बारे में भी। और व्हेन आई से सीरियस आई मीन खबरें, यानी कि न्यूज, क्या चल रहा है खबरों में, क्या चल रहा है न्यूज में, वॉर फ्रंट क्या चल रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हूतियों ने सऊदी के तेल ठिकानों पर किए नए हमले। जी हाँ, ईरानी समाचार एजेंसियों और मीडिया संस्थानों ने सोमवार सुबह सऊदी अरब में तेल ठिकानों पर नए हमले की खबर दी। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इन हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। बताया गया है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया। बीबीसी फारसी के मुताबिक इन हमलों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक अन्य स्रोतों से नहीं हुई है। आईआरजीसी के करीबी तस्नीम समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि हमलों में अबहा और खमीस मुशायद के इलाकों को निशाना बनाया गया। क्षेत्र के 4 शहरों में हवाई हमले के सायरन भी बजाए गए। इससे पहले रविवार रात सऊदी अरब ने नागरिक सुरक्षा संगठन ने देश के 4 शहरों के लिए हवाई हमलों की चेतावनी जारी की थी। संगठन ने जाजान और नजरान प्रांतों के साथ साथ अबहा और खमीस मुशायत शहरों से में रह रहे लोगों से सुरक्षा संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की थी। फिलहाल हमलों में हुए संभावित नुकसान या किसी के हताहत होने की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आ गया है। सऊदी अरब से इस फैसले का पड़ा असर। जी हां, सऊदी अरब की प्रमुख तेल पाइपलाइन अस्थायी रूप से बंद होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। राइटर्स के मुताबिक सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.21 बढ़कर $107.82 प्रति बैरल पर पहुंच गई। तेल की कीमतों में तेजी की एक वजह सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के ताजा हमले और फारस की खाड़ी में जहाजों पर ईरानी हमले भी हैं। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई थी और ये $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। जुलाई के बाद ये पहली बार था जब कच्चे तेल की कीमत इस स्तर पर पहुंची थी। सऊदी अरब के अधिकारियों ने ड्रोन हमले के बाद देश की ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये पाइपलाइन सऊदी अरब को तेल निर्यात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है, जिससे कच्चे तेल को हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरना पड़ता। पाइपलाइन के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 4% हिस्सा प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताओं का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ हूतियों ने भी दावा किया है कि सऊदी अरब ने भी यमन पर एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, हूतियों के टेलीविजन न्यूज चैनल अल मसीरा ने दावा किया है सऊदी के सैन्य विमानों ने यमन के ताइज इलाके में हवाई हमले किए हैं। ये वो क्षेत्र है जहां ईरान समर्थित हूती समूह ने हाल के दिनों में सरकारी बलों के खिलाफ सैन्य बढ़त हासिल की है। अल मसीरा के मुताबिक सऊदी विमानों ने उत्तरी यमन में हूतियों के प्रमुख गढ़ सादा में भी कई ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले हूती सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया था कि संगठन ने दक्षिण सऊदी अरब में एक सैन्य अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच सऊदी अरब के तेल कारोबारियों और शेयर धारकों ने चेतावनी दी है कि अगर देश की प्रमुख ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन को जल्द दोबारा शुरू नहीं किया गया तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका असर पड़ सकता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि कैसे सऊदी अरब ने अपनी पाइपलाइंस को बंद कर दिया है अस्थायी रूप से। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो कब खोलने वाले हैं, जो कि काफी गड़बड़ बात है, क्योंकि उससे तेल के प्राइसेस जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ ओमान के पास कमर्शियल जहाज पर भी हमला हुआ है, भारतीयों को लेकर आए ये अपडेट। जी हाँ, ओमान के तट के पास रविवार को कमर्शियल जहाज MTL गाया पर हमला हुआ। जहाज पर 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 13 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने जहाज पर हुए हमले की निंदा की है। मंत्रालय ने बताया है कि ओमान में भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और लापता भारतीयों की तलाश और बचाव अभियान में ओमानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पहले ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज MTL गाया पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से अब तक 13 भारतीयों को बचा लिया गया है, लेकिन एक भारतीय अभी भी लापता है। और उन्होंने कहा कि तलाश और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमारे नागरिकों को बचाने में मदद करने के लिए हम ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। तो बेसिकली आप कहीं भी

कुछ ना हो, लेकिन जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं ऐसे भी चीजों के बारे में हमें प्रिपेयर रहना होगा। इनफैक्ट चाइना अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहा है कि अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो आपको कैसे करना है, मेडिकल असिस्टेंस कैसी होगी, सब कुछ। मतलब चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, वो अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहा है।

जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों के बारे में बात हो रही है और मिडिल ईस्ट में तो चल ही रहा है विवाद, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम के गुजरने के कुछ देर बाद यूक्रेनी ट्रेन पर रूसी हमला। जी हाँ, रूस और यूक्रेन का विवाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जी यूक्रेन में पोलैंड सीमा के पास याहोदीन इलाके में एक यात्री ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। हमले में ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा है, हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। खास बात यह है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का काफिला इसी रेल मार्ग से एक दूसरी ट्रेन में सवार होकर हमले से कुछ समय पहले गुजरा था। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक यह हमला याहूदीन में हुआ, जो पोलैंड की सीमा के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है। बोरिस जॉनसन के साथ यूरोपीय देशों के कई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इसी रेल मार्ग से गुजरे थे। इनमें ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल भी शामिल थे। सभी अधिकारी कीव में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे थे। रूस ने भी हमले की पुष्टि की है। रूसी पक्ष के मुताबिक पश्चिमी यूक्रेन में रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन की सरकारी रेलवे कंपनी ने आशंका जताई है कि ड्रोन का वास्तविक निशाना राजनयिकों को ले जा रही ट्रेन हो सकती थी। रेलवे कंपनी के अनुसार टाइम टेबल में बदलाव के चलते राजनयिक ट्रेन निर्धारित समय से पहले स्टेशन से रवाना हो गई थी। रूस की ओर से लगातार हो रहे हवाई हमलों के खतरे को देखते हुए ट्रेन के समय में बदलाव भी किया गया था।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों इसी के साथ आप सबको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। जी हाँ, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान गणेश, लॉर्ड गणेश, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, अच्छी हेल्थ, बहुत सारी वेल्थ और वो सारी मनोकामनाओं को पूरी करे जो आप चाहते हैं। जी हाँ, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है और यही हमारी शुभकामना है आप सबके लिए। क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और बहुत सारे लोग अपने घर में जो है वो बप्पा को लेकर आ रहे हैं और उनको कुछ दिन अपने घर पे रखेंगे। ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। सो ऑफकोर्स इंडिया में इसे और भी ज्यादा ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। लाइक लिटरली सारी की सारी गलियां जो है वो सजी होंगी। और ऐसा भी कहा जाता है जाता है कि हर गणेश चतुर्थी को कोई ना कोई ऐसे लॉर्ड गणेश या भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बनाई जाती है जिसका इंश्योरेंस ही इतना बड़ा होता है, हेफ्टी होता है कि लिटरली उसकी प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे लोग चलते हैं। सो ऑफकोर्स लोगों की आस्था है और लोगों की श्रद्धा है और हमारी भी यहां पर आपके लिए शुभकामना है। सो ये गाना आप सबके लिए आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर।

ये कुछ गाने ऐसे हैं जब आपको इतना जोश आ जाता है। वेल ऑफकोर्स गणेश चतुर्थी तो आज है, अब 10 दिन तक ये पूरे के पूरे जो है ये खूबसूरत और बहुत ही पवित्र दिन जो है वो चलने वाले हैं। घर में स्थापना करेंगे लोग गणपति बप्पा की और फिर उसके बाद जो है वो 10वें दिन विसर्जन किया जाएगा। तो अगेन गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। और कल ही की बात है दोस्तों, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और आपको पता है ये सोशल मीडिया चलाते चलाते मुझे कुछ ऐसा हमेशा मिल जाता है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना होता है। तो वहां पर मेरी नजरों के सामने, मेरी आंखों के सामने एक मीम आता है, उस पर लिखा होता है माय थेरेपिस्ट सेड दैट व्हेन आई एम एंग्री आई शुड गो फॉर अ वॉक। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम इन मेक्सिको नाउ एंड आई वॉज लाइक या दैट्स ट्रू, क्योंकि आधी बात तो थेरेपिस्ट ने बता दी कि जब भी जो है वो गुस्सा आए तो वॉक करो। जी हाँ, अब गुस्सा ठंडा ना हो तो क्या वॉक करते रहे, पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाए, उसके बाद की बात बताओ ना। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका गुस्सा शांत नहीं होता है, लाइक आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, कि मेरा गुस्सा भी जो है शांत होने का नाम नहीं लेता। सो अगर मैं भी किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी और वो मुझे ये सलाह देगा कि जब भी मुझे गुस्सा आए टेक अ वॉक, तो क्या करूं, व्हाट एम आई सपोज टू डू? मतलब मैं वॉक करती रहूं और पृथ्वी के अंत तक जो है वो पहुंच जाऊं क्योंकि गुस्सा तो शांत तब भी नहीं हुआ है, व्हाट एम आई सपोज टू डू? ये थेरेपिस्ट ना बड़े ही फनी होते हैं और बड़े ही दिलचस्प होते हैं, मतलब ऐसे आइडियाज बताते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी थोड़े से ठीक लगते हैं। अब मतलब वॉक करना इज अ गुड थिंग, सो ऑफ कोर्स वॉक से ऐसा लगेगा कि गुस्से में थोड़ा तो असर पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका गुस्सा ठंडा होता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करे, वो इंसान तो वॉक ही करता रह जाएगा, मतलब पृथ्वी की वॉक करते करते वो 2-4 चक्कर तो काट ही देगा। जी हाँ, सो ऐसे में उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको फिर क्या करना है? अगर वॉक से नहीं पड़ रहा है फर्क, गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें मिस्टर थेरेपिस्ट और मिस थेरेपिस्ट, ये भी बता दिया करो। जी हाँ, कहीं आप किसी थेरेपिस्ट के पास गए हो तो किसी ने आपको ऐसा बोला है, या फिर द आइडिया ऑफ थेरेपिस्ट इज वेरी यू नो वैसा वाला है आपके लिए कि ओ बस जिंदगी बाकी सब कुछ दिखा दे पर थेरेपिस्ट के पास जाने का मौका ना दे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब में। वक्त हो गया है, घड़ी ने भी इशारा कर दिया है, तो आइए सीधा चलते हैं अपने फेवरेट अब सेगमेंट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। वेल, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराने गानों का वो खूबसूरत समा हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। पुराने गाने होंगे, पुराने किस्से होंगे, वो तराने भी होंगे। यू वेटिंग फॉर, आपके पास नंबर है, जल्दी से कोई पुराना गाना अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो जी हाँ, इसी के साथ जो नंबर वन यानी कि पहला गाना इस सेगमेंट का मैं प्ले करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, वो है रेशम की डोरी। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, रेशम की गलियां। जी हाँ, रेशम की गलियां, रेशम की गलियां। और मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी रफी साहब गाते हैं ना, वो मतलब एकदम रफी साहब जैसा सिंगर जब भी गाता था तो ऐसा लगता था क्या ही गा दिया। जो मुझे अचंभित करती थी बात रफी साहब के बारे में, वो ये थी कि वो कोई भी और किसी भी टाइप का गाना गा देते थे। जी हाँ, और वो बहुत ही बखूबी उसे गाते थे। और जब भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती थी, मैं हमेशा जब भी कश्मीर की गली मूवी के उनके गाने सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मिजाज है। वेल ऑफकोर्स वो इसलिए भी था क्योंकि शम्मी कपूर रफी साहब को अपनी आवाज बनाकर बैठ गए थे। मतलब उन्होंने कह दिया था कि अगर मेरे गाने कोई गाने वाला है तो वो रफी साहब गाएंगे और कोई नहीं गाएगा। इनफैक्ट इसकी वजह से शम्मी कपूर और राजकुमार का एक विवाद हो गया था, क्योंकि जब एक ही पिक्चर में दोनों काम कर रहे थे तो उसके लिए शम्मी कपूर की आवाज रफी साहब बने, लेकिन राजकुमार कह रहे थे कि मुझे भी रफी साहब की आवाज चाहिए, और इनफैक्ट मुझे रफी साहब की आवाज चाहिए। वो कह रहे थे कि शम्मी कपूर आप किसी और सिंगर से अपना गाना जो है वो गवा लीजिए। लेकिन शम्मी कपूर ने बैक ऑफ नहीं किया। शम्मी कपूर ने कह दिया कि मैंने तो पहले से ही ठानी हुई है भाई, देखो मैं तो ठान चुका हूं कि मेरे गाने रफी साहब ही गाएंगे और मैं इसके साथ समझौता नहीं करूंगा। उस पिक्चर के बाद उन दोनों की ट्यूनिंग, यानी कि शम्मी कपूर साहब और राजकुमार की ट्यूनिंग इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि फिर उसके बाद दोनों ने साथ में काम ही नहीं किया कभी। जी हाँ, अब खुद सोचिए, उन्होंने लिटरली बायकॉट कर दिया कि आई एम नॉट गोना वर्क विद शम्मी कपूर, क्योंकि उन्होंने रफी साहब को मेरे गाने गाने नहीं दिए थे, उन्होंने अपने गाने जो है वो रफी साहब से गवाए, मेरे नहीं गवाए। जी हाँ, एंड दैट वाज द रीजन। अब आप ये सोचिए कि जब भी हम रफी साहब की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कश्मीर की गली में जितने भी गाने हैं वो मस्ती भरे गाने हैं, उम्दा है। या तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक कोई गाना है, या तो कोई बहुत ही ज्यादा गाना ऐसा है जिसमें मस्ती चाहिए और बहुत ज्यादा, मतलब याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मुझे इससे ज्यादा मतलब मस्ती क्या ही आपको एग्जांपल दूं। लेकिन फिर वहीं गाइड मूवी आती है और गाइड में मतलब ऐसे आए हैं रफी साहब जैसे गम में डूबा हुआ कोई इंसान है, मतलब उसकी जिंदगी से उसका प्यार जो है वो चला गया ऐसा लग रहा है। अब रफी साहब की जिंदगी में रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर देवानंद साहब के उस दर्द को उतारने के लिए उन्होंने लिटरली इतना दर्द भरे तरीके से वो गाना गाया कि आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कायल हो जाओगे। मतलब कश्मीर की गली में अपनी मस्ती से हमें दीवाना बना दिया, रोमांटिक गानों से हमें दीवाना बना दिया, और गाइड में उन्होंने लिटरली हमें अपने गम भरे मिजाज से दीवाना बना दिया। मतलब क्या कहूं मैं रफी साहब के बारे में। जी हाँ, इसके साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, जब भी बात होती है बहुत ही ज्यादा शिद्दत से कोई करता था, तो क्या आप गेस कर सकते हैं किस एक्टर, किस डायरेक्टर का नाम जो है वो लिया जाता है? मैं गेस करने के लिए बस दूंगी 5। Yeah, आप लोग बोलोगे व्हाट इज दिस? वेल ऑफ कोर्स आई वाज गिविंग यू टाइम, दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग। सो या आई एम टॉकिंग अबाउट कपूर खान एंड पर्टिकुलरली राज कपूर। मतलब आरके स्टूडियोज ने क्या क्या नहीं बनाया। जी हाँ, और मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी हीरोइन ने कि राज जब मूवी बनाते थे ना, तो उसमें पूरी तरह से रच बस जाते थे। जी हाँ, फिर चाहे जीनत अमान हो, जी हाँ, फिर चाहे हेमा मालिनी हो, जी हाँ, फिर चाहे वैजंती माला हो, जी हाँ, फिर चाहे नरगिस हो। इनफैक्ट नरगिस ने तो राज कपूर की डायरेक्शन पे इतना ज्यादा जो है वो बिलीव किया था कि वो आरके स्टूडियो में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर थी। जी हाँ, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट हर, बट द थिंग इज कि नरगिस की एक्टिंग ही सबसे अच्छी चीज नहीं थी। उनकी एक्टिंग, उनकी शख्सियत तो अच्छी थी ही, लेकिन उसके अलावा उनके जो फैसले थे व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस वुमन, इट वाज ग्रेट। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि आरके स्टूडियो में बहुत बड़ा जो है वो स्टेक था नरगिस का, और वो इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि राज कपूर की जो स्टोरी टेलिंग थी वो उन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। जी हाँ, और दैट वाज द रीजन कि उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट जो है, काफी बड़ी अमाउंट जो है वो स्टेक की थी आरके स्टूडियो में। जी हाँ, अब राज कपूर की फिल्म मेकिंग की जब भी बात होती है, ऑफकोर्स उन्होंने लीग से हटकर भी बहुत सारी फिल्में बनाई है। मतलब राम तेरी गंगा मैली हो गई, मतलब राम तेरी गंगा मैली हो गई के लिए तो उन्होंने मतलब सारी हदें ही पार कर दी। वो मतलब चाहते थे कि उनको लड़की जो है वो एकदम पर्टिकुलर और बहुत ही खूबसूरत फीचर्स, मतलब ऐसी हीरोइन जो किसी ने देखी ना हो। जी हाँ, और सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उन्होंने रूपा का कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ था कि ओह, नॉट एवरी वन कुड प्ले द रूपा। ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि रूपा के लिए उनकी पहली चॉइस हेमा मालिनी थी, बट हेमा मालिनी को वो पिक्चर बहुत ज्यादा बोर्ड लगी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद जीनत अमान ने खुद से उन्हें रूपा का कैरेक्टर इमेजिन करवाया। जब वो इस पिक्चर का हिस्सा बनना चाहती थी तो उन्होंने एक कॉस्ट्यूम बनाया और फिर उसके बाद वो राज कपूर के पास गई। लेकिन आप खुद सोचिए कि इतनी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग, मतलब मेरा नाम जोकर, क्या ही बात की जाए। ऑल्दो ये पिक्चर जो है वो चली नहीं थी उस वक्त इतनी ज्यादा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके बाद वो मूवी आज भी चल रही है। इनफैक्ट रणधीर कपूर ने इतना तक कह दिया है कि मेरा नाम जोकर जो है वो आरके स्टूडियोज का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक इंसान जो कि लिटरली लेजेंडरी है, या द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ हिंदी फिल्म सिटी, हिंदी फिल्म वर्ल्ड, एंड दैट वाज राज कपूर। अब राज कपूर को ऑनर सिर्फ उनके खानदान वाले नहीं करते हैं, बल्कि सब करते हैं। मतलब जो स्टोरी टेलिंग, जो एक्टिंग, क्या ही बात है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे इजाजत भी चाहते हैं क्योंकि गाना है लंबा और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से सुनें, तो आपसे इजाजत चाहते हैं और अब आपसे मिलना होगा कल, जी हाँ मतलब ट्यूसडे को। आप अपनी मोटिवेशन को बिल्कुल कम मत होने दीजिएगा, दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं, आई वॉन्टेड यू टू लिसन टू इट बहुत ही अच्छे से और पूरी तरह से, और मैं इस गाने को काटना नहीं चाहती थी। सो ये होंठों में ऐसी बात आप सबके लिए, बाय बाय, सी यू टाटा।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विथ रंग।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। क्वींसलैंड पुलिस का ऑपरेशन यांकी फोर्स। जी हां, ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में बढ़ रही गाड़ियों की चोरी और संपत्ति से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए क्वींसलैंड पुलिस ने ऑपरेशन यांकी फोर्स के तहत कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें आज कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं 18 साल के आरोपी पर 42 मामले दर्ज। ब्रिस्बेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज 18 वर्षीय युवक को पेश किया जा रहा है, जिस पर गाड़ियों की चोरी और मकानों में अवैध घुसपैठ के कुल 42 यानी 42 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नए नियम लागू। क्वींसलैंड सरकार ने ब्रिस्बेन और राज्य भर में होने वाले बड़े खेल आयोजनों की सुरक्षा और सुचारू संचालन को और मजबूत करने के लिए नए कानून पारित किए हैं। वहीं विलियम रॉबिन्सन आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन। ब्रिस्बेन में मशहूर ऑस्ट्रेलियाई चित्रकार विलियम रॉबिन्सन की विशेष कला प्रदर्शनी लेसन्स इन लुकिंग का आज से आगाज हो गया है, जिसे देखने बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंच रहे हैं। वहीं कोस्ट गार्ड की लाइफ गार्ड सीजन की तैयारी। ब्रिस्बेन के तटीय और बीच इलाकों में गर्मी की आहट के साथ ही लाइफ गार्ड सीजन की शुरुआत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर बहस तेज। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने के प्रस्तावित नियमों पर विवाद गहरा गया है। ब्रिस्बेन के शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है इससे यूनिवर्सिटीज और लोकल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार बंद। जी हां, भारत में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भारतीय शेयर बाजार BSE और NSE में कारोबार पूरी तरह से बंद है। वहीं ब्रिक्स समिट का समापन। नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को सबसे आगे रखा गया और विश्व शांति के लिए कूटनीति पर बल दिया गया। वहीं वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का सफल ट्रायल। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत फ्रेट यानी मालगाड़ी EMU ने अपने ट्रायल रन के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। वहीं रेल यात्रियों की संख्या में उछाल। भारतीय रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में कुल 67 यानी 67 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने ट्रेन से सफर किया है। वहीं MBBS इंटर्न की स्टाइपेंड बढ़ी। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल छात्रों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। MBBS इंटर्न्स की मासिक स्टाइपेंड 17,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वहीं इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें UN सुरक्षा परिषद यानी UNSC से में सुधार की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि 1945 के मुकाबले आज की वैश्विक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वहीं एंथ्रोपिक की IPO की तैयारी। जी हां, लोकप्रिय AI चैटबॉट क्लाउडे बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने अमेरिका के नेस्डेक बाजार को अपना बहुप्रतीक्षित IPO के लिए चुना है, जिसे अक्टूबर तक लॉन्च करने की आयोजना है। वहीं सॉफ्ट बैंक को भारी भरकम लोन। जी हां, जापानी कारोबारी समूह

सॉफ्टबैंक ने एआई स्टार्टअप ओपन एआई में निवेश और फंडिंग के लिए 11.9 बिलियन डॉलर का बड़ा बैंक लोन हासिल कर लिया है। इसी के साथ रेड सी में तनाव बढ़ा। यमन के तटीय इलाकों और लाल सागर के आसपास जारी सैन्य झड़पों के चलते वैश्विक स्तर पर समुद्री माल ढुलाई और क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी के साथ कनाडा का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अमेरिका पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कनाडा ने अपने विशाल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को मेजबानी की है, जिसमें दुनिया भर के 300 से ज्यादा दिग्गज निवेशक शामिल हो रहे हैं। वहीं क्रिप्टो मार्केट पर नए नियम, अमेरिकी संसद में 2.3 ट्रिलियन डॉलर के क्रिप्टो बाजार को रेगुलेट करने के लिए क्लैरिटी एक्ट बिल पर वोटिंग होने जा रही है, जिसके तहत नेताओं के क्रिप्टो लेनदेन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता एशिया कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 72 यानी 72 रनों से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं यूएस ओपन महिला सिंगल्स का खिताब, टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रायबिकिना ने फाइनल में दो बार की चैंपियन आर्याना संबालेका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। वहीं तीरंदाजी में धीरज बोमदेवर का स्वर्ण पदक मिला। जी हां, भारत के शीर्ष निशानेबाज धीरज बोमदेवरा ने मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड कप फाइनल में जापान के जूनिया नाकन निशी को हराकर पुरुष रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। वहीं जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत की दोहरी जीत। इसके साथ पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 कैटेगरी में शानदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 101.3।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी बल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: सोचो कि ऐसी क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।
6: तो तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है?

0: बेटा? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनु तैयार कीता। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो। पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां, गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ
1: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com।
0: मैं चाहती हूँ आज
1: इस फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ड ऑन ट्रस्ट।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रजिस्ट्रेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जिहड़ा, ये गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरशां दे पलायन दा भी मतलब संबंध रखता हैगा, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नू अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरश सीगे नू अक्सर भीड़भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 1.1 FM ते जी अच्छे संदेश अलग दिराल से बने हुए हो। और देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो उन्होंने इन्ना कुछ दास्ता है तो उसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जेड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्होंने कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच भी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाह चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: आई एम योर ओनली एडम।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेंबर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

अगर इश्क हल्का कर दे तो वही सही इश्क है, जो बोझ बन जाए सीने पर वो बस आदत की रे।

जीवन अनमोल है, ये जीवन इसका कोई मोल नहीं है, आप कितने ही रुपए खर्च कर लें। कहते हैं जिसे इस दुनिया से जाना है ना, उसे आप बचा नहीं सकते। और यकीन मानिए, जो इस दुनिया से जा रहा है, अगर आप उसका सारा धन वैभव भी ले लें तो वो खुशी खुशी दे देगा अपने इस जीवन के लिए। लेकिन जीवन रहते हम इस जीवन को ना तो जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। आइए आज वक्त रहते अपने जीवन को जानने की एक और कोशिश करते हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर हमारे खास सफर जीवन आधार में। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

0: चिंता, आपने भी ये जरूर सुना होगा श्रोताओं कि चिंता चिता के समान होती है। और आज के दौर में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चिंता, वो हम सबको घेरे हुए है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं। और चिंता कोई एक नहीं होती, चिंता के अनेक रूप हैं। आज इसकी चिंता तो कल उसकी चिंता, या फिर ये कहें एक ही वक्त में न जाने कितनी चिंताएं हम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये चिंता ही है जो आपको चिता तक ले जाती है। जिसको एक बार चिंता हो गई ना, वो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, लेकिन उसका रोग खत्म नहीं होता, बल्कि एक रोग से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आप अगर पढ़ने और जानने बैठेंगे, आप समझने बैठेंगे, तो ज्यादातर बीमारियां आज के समय में जो हो रही हैं, वो इसी चिंता के कारण ही हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM और रहिए सताक्षी के साथ।
1: के कदम देखो रम पम।

जीवन को जानने समझने और खूबसूरत बनाने का ये जो सफर है जीवन आधार, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके साथ है सताक्षी। चलिए अपने जीवन को एक नया आधार देते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। भव सागर में डूबता कर गई काढ़ कैस। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। और कबीरदास जी कहते हैं श्रोताओं कि हम संसारी जन जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमको कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला, हमको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला, रास्ता बताने वाला नहीं मिला जो उपदेश देता। और हम जो भव सागर में डूब रहे हैं, जो बिना ज्ञान के हम गोते लगा रहे हैं, हम इस संसार में चक्कर लगा रहे हैं, कोई होता जो हमको पकड़कर निकाल लेता, है ना। अक्सर जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं तो ये लगता है कि यार कोई होता जो हमें सही राह दिखा पाता, जो हमें सही और गलत का भेद बता पाता, तो शायद हमारी जिंदगी में फेलियर्स आते ही नहीं। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जब तक आप जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, कोई आपको कितना भी संभाल ले, आप गलत करने से बच नहीं पाएंगे। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सही रास्ते पर लाते हैं और सही और गलत की पहचान कराते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंस के नाम ये अगला गीत है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार में रचा बचा ये साथ है हमारा, ये साथ है जीवन के आधार से जुड़ा जीवन आधार। जी हाँ, जिंदगी आसान तो है, लेकिन ये जिंदगी तब आसान लगती है जब इस जिंदगी को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना ये जिंदगी हर रोज एक नई मुश्किल से भरती चली जाती है। आइए अपनी जिंदगी को और करीब से जानते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

मनुष्य की एक बहुत ही बुरी आदत है कि उसमें बहुत जल्द गर्व आ जाता है। गर्व आ जाता है इस बात का कि आज उसके पास नेम है, फेम है, घर है, गाड़ी है। इस बात की जो एक ईगो है वो उसमें आ जाती है। अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति को देखकर कभी घमंडी मत बनिए, क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य की जो देह है ना दोस्तों, वो भी धरती में डल जाती है और उसके ऊपर भी घास उगाती है। इसलिए किस बात का घमंड, ये जब शरीर ही आपका नहीं है तो धन संपत्ति वैभव पोजिशन ये कैसे आपकी होगी। आइए इसी एक बात के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन के सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन को जानने की समझने की एक और कोशिश जीवन आधार रेडियो ब्रिजवाणी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ, और इसी कोशिश के साथ एक और गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिजवाणी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार।

धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला कभी भी आप ठीक से नहीं ले सकते। अब देखिए ना, अगर कोई माली किसी पेड़ को सौ घड़े पानी से भी सींचने लगे तो भी वो फल तो ऋतु आने पर ही देगा ना। ऐसा तो नहीं अगर आप उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो आपका पेड़ भी जल्दी बढ़ जाएगा और उसमें फल भी आ जाएंगे। सब कुछ वक्त के साथ ही होता है, इसीलिए हर चीज को समय दीजिए, वक्त दीजिए और वक्त पर छोड़ दीजिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन आधार में आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास साथ जीवन आधार में। वक्त की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और आपसे कल मिलने के वादे के साथ आज के सफर से अब लूंगी विदा, इजाजत, और कल जरूर लौट कर आऊंगी। तो कल जब तक आपसे अगली मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी और हर एक लिसनर्स को एक बहुत ही प्यारी वाली गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जॉनी जैन और शुरू हो चुका है आपकी फेवरेट मॉर्निंग कैंपेनियन यानी रेडियो ब्रिस्बानी में आपके अपनी दोस्त और होस्ट आरजे जॉनी जैन लेकर हाजिर हो चुके हैं जॉनी का सफर प्रोग्राम। आज है ट्यूजडे और ट्यूजडे का मतलब मंडे वाली नींद अभी ना पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन भाई वीकेंड अभी बहुत दूर है। तो अगर आप अभी बेड से उठ रहे हैं ना, तो एक काम कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, स्माइल कीजिए और खुद से कहिए टुडे इज गोइंग टू बी अ गुड डे। जी हाँ, चाहे आप ब्रिस्बेन की रोड्स पर ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, या फिर भाई किचन में ऑलवेज वाला एज यूजुअल ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो रेडियो ब्रिस्बानी आपके साथ है। और आज का रिमाइंडर बहुत ही सिंपल है, हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, कल क्या हुआ वो आज को डिसाइड नहीं करता है। सो ब्रिस्बेन वॉल्यूम थोड़ा सा आप कीजिए, लेट्स मेक दिस ट्यूजडे सो ब्राइट, पॉजिटिव एंड फुल ऑफ गुड वाइब्स। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को इस गीत के साथ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ ने वार्निंग दी है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऑस्ट्रेलिया एआई ड्राइवन यानी कि साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो सकता है। मैसेज सिंपल है, यानी टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट ग्रो कर रही है, सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी उतनी ही स्पीड से अपडेट करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी बनाती है दोस्तों, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट रहना भी उतना ही जरूरी है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद क्वींसलैंड के अपडेट। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए अब बात करते हैं क्वींसलैंड अपडेट की। क्वींसलैंड में होमलेसनेस और पब्लिक स्पेस मैनेजमेंट को लेकर एक सीरियस इंसिडेंट ने अटेंशन अट्रैक्ट किया है। मॉर्टन बे एरिया में एक होमलेस मैन के केस में पुलिस रिस्पांस और सपोर्ट सिस्टम को लेकर क्वेश्चंस उठा रही है। इस तरह की स्टोरीज जो है हमें याद दिलाती है कि कम्युनिटी का मतलब सिर्फ एक जगह पर रहना नहीं है बल्कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना भी है। आइए जी हम सपोर्ट करते हैं। इस गीत को सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। जाने के थोड़ी ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया की और भी बहुत सारी बातें। सुनते रहिए और बने रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में।

हाँ जी, तो विक्टोरिया के कुछ एरियाज में वीकेंड पर इरिडिसेंट क्लाउड्स जो है वो देखे गए हैं। क्लाउड्स में रेनबो जैसे कलर्स नजर आए हैं। जी हाँ, ये नॉर्मल रेनबो नहीं था, ये फेनोमिनन सनलाइट के डिफ्रेक्शन जो है उसकी वजह से होता है और रिलेटिवली जो है रेयर ही होता है। यानी तो अगर आपको कभी स्काई में रेनबो कलर्ड क्लाउड्स दिख जाए, कैमरा निकालिए, क्योंकि नेचर कभी कभी ना बिना टिकट के बेस्ट शो भी दिखा ही देता है ना। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। और कुछ अगर हम विचार यानी कि थॉट यानी कि मॉर्निंग थॉट की बात करें, समटाइम्स यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू जस्ट नीड अ न्यू माइंडसेट। जी हाँ, कभी कभी सिचुएशन सेम होती है, लेकिन जब हम अपना कह सकते हैं जो पर्सपेक्टिव होता है उसको चेंज करते हैं तो वही सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट लगने लगती है। सो टुडे कंप्लेन लेस, स्माइल मोर, कंपेयर लेस, अप्रिशिएट मोर। जी हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम हमेशा खुश ही रहेंगे। जानेंगे थोड़ी देर बाद और बहुत सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, आज है 15th of September, जो कि इंडिया में नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, ये डे जो है लेजेंडरी इंजीनियर और स्टेट्समैन सर मोक्षगुण दम जो है विश्वेश्वरा उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन्स या फिर बिल्डिंग्स बनाना नहीं है दोस्तों, इंजीनियरिंग का असली मैजिक है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाना। तो रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में काम कर रहे सभी इंजीनियर्स को सो वाला हैप्पी इंजीनियर्स डे और एक स्पेशल शाउट आउट ऑन पेरेंट्स को भी, जिनके घर में कोई इंजीनियर है और बचपन से सुनते आए हैं बेटा इंजीनियर बन जाओ, हाँ जी, उनके लिए भी हैप्पी इंजीनियर्स डे। आइए इसके साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में वक्त आ गया है आज के ब्रिस्बन मॉर्निंग शो को रैप करने का। लेकिन याद रखिए, आपकी मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये आपके पूरे दिन का मूड सेट करती है। तो आज किसी एक इंसान को स्माइल दीजिए, किसी एक को थैंक यू जरूर कहिए और खुद से भी कहिए आई एम डूइंग बेटर देन आई थिंक। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट राजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। सो ड्राइव सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड और कल सुबह फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप शाइनिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी। गुड मॉर्निंग ब्रिस्वन एंड हैव अ ब्यूटिफुल ट्यूजडे।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सऊदी ईरान के बीच फंसा पाकिस्तान, हुती विद्रोहियों के हमले के बाद डैमेज कंट्रोल में लगे शहबाज। इस साल पाकिस्तान ज्यादातर दोहरी चाल चलता रहा है, एक तरफ वो अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत में मदद करता रहा तो दूसरी तरफ ईरान के खाड़ी क्षेत्र के प्रतिद्वंदी सऊदी के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते सऊदी सेना और यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के बीच हुई लड़ाई ने पाकिस्तान के लिए दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना मुश्किल कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने रक्षा सहयोगी सऊदी अरब को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की, ये कदम कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को संभालने की कोशिश जैसा लग सकता है। अमेरिका में $93 मिलियन के मेडिकेयर धोखाधड़ी, भारतीय मूल का आरोपी भगौड़ा घोषित। जेनेटिक टेस्ट के लिए झूठे क्लेम करके मेडिकेयर हेल्थ केयर स्कीम से $93 मिलियन की धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को भगौड़ा घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार माना जा रहा है कि मोहम्मद भारत के हैदराबाद में है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि खदीर खान मोहम्मद ने अगस्त 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच डॉक्टरों की निजी पहचान की जानकारी का इस्तेमाल उनकी जानकारी या सहमति के बिना क्लेम सबमिट किए या अन्य लोगों से करवाए। संख्या। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चाइना ने 2025 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती काफी कम की है। मंत्रालय ने कहा कि इस साल भारत की उत्तरी सीमाओं के सामने पीएलए की तैनाती में काफी कमी देखी गई है। मंत्रालय के मुताबिक एलएसी के साथ वाले इलाकों और पारंपरिक ट्रेनिंग एरिया में कंबाइंड आर्म ब्रिगेड के आकार की 10 टुकड़ियां तैनात रहीं। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि एलएसी के सभी सेक्टर्स में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत, अच्छी स्थिति में और किसी भी अचानक पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखी। ब्रिक्स की आड़ में कहीं चाइनीज सामान और एआई की एंट्री तो नहीं, चिनफिंग के 5-पॉइंट प्लान को लेकर भारत सतर्क। चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन के समापन सत्र में एकीकृत बाजार बनाने और ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता चाइना को मिलने वाली है, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि शी चिनफिंग इन मुद्दों को अगले साल के मुख्य एजेंडे में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चाइना की इस पहल को लेकर भारतीय नीति निर्माता और विशेषज्ञ काफी सतर्क हैं और इस प्रस्ताव से भारत में किसी खास उत्साह की उम्मीद नहीं है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
6: ओके, लेट मी प्ले दिस सॉन्ग, देन वी विल कम बैक। हे, जस्ट दिस सॉन्ग जस्ट केम टू मी।
7: ओके,
6: and I just wanted to play it.
8: Okay. Oh, mere Raja, Raja,
9: Raja.

0: अमिता, डिड यू वॉच दिस मूवी?
1: नो.
0: ओके,
1: आई हैव नॉट.
0: देखिए, एक ये जो रेडियो ये क्या बोलते हैं 1973 की जोनी मेरा नाम, दोस्तों ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी. देवानंद का जो स्टाइल इसमें है, हेमा मालिनी की अदा और कल्याण जी आनंद का म्यूजिक, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया उसमें. और ये इसीलिए आपको देखना चाहिए अमिता. इट्स अ थ्रिलर. आई थिंक इट्स अबाउट टू ब्रदर्स दैट वेंट मिसिंग एंड जोनी एंड देवानंद इज अ पुलिस, व्हाट यू कॉल इट, यू नो, ही इज अ सीआईडी ऑफिसर एंड देन ही गोज इनटू दिस गैंग काइंड ऑफ थिंग to catch the main fellow, I think. And I think it happens to be his brother, if I'm not mistaken.
1: Oh, he was playing a double role, was he?
0: I don't think he was playing a double role. I think...
1: Okay, Pran, so he didn't look alike.
0: No, not.
1: Oh, okay.
0: As far as I know, it's not a look alike.
1: Okay.
0: If I remember... I remember this movie so well, you know, I mean, yeah, parts of it. I remember well. Yeah. Sometimes I confuse it with Jewel Thief, but no, it. I think Hema Malini had just sort of started acting there.
1: Okay. So when was this movie released?
0: 1970, when was it?
1: So she only started then,
0: can't
1: be.
0: 1970.
1: Oh.
0: Yeah. No, no,
1: feels like
0: one of her movies.
1: One of her earlier movies.
0: Yeah.
1: Okay. Right.
0: Okay. तो थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के लिए, और मैं भी अपना मेमोरी को फ्रेश किया हूँ. रिफ्रेश. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इस समय 12 मिनट रह गए हैं 8 बजने में.
1: ओके, वाओ, द टाइम इज मूविंग ऑन.

0: Oh, sí, mirí nazar que mere hoss ud gayi. Socho.
1: How would you put it?
0: How would I put it? You asking me how I put it?
1: Yeah.
0: Achha, jaise hi meri kya bolte hain nazar unse mili.
1: Haan.
0: मैं उनकी खूबसूरती या मोहब्बत में मैं इतना खो गया
1: हाय हाय
0: कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा. ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट इज सेइंग. इट्स ओनली ट्यूसडे टुडे, नॉट इवन वेडनेसडे. हाय हाय,
1: यू आर फनी.
0: ये तो गाना में कह रहा है, कह रही है. ओके, रेडियो बिजवानी दोस्तों, नंबर है 04300317001.

0: किसी ने टेक्स्ट किया मेरे पास, सॉरी सर हमारे घर के आगे कोई जगह नहीं है, अब जमीन खाली नहीं है, आप वहां पर घर बना नहीं सकते हो. एनीवे थैंक यू वेरी मच. आई एम हैप्पी पीपल आर एंजॉयिंग एंड रिस्पोंडिंग. लाइफ में थोड़ा हंसना, थोड़ा नहीं, हमेशा हंसना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज नथिंग बिलोंग्स टू यू, कुछ नहीं आपके पास, ठीक है. सो इस पर बहुत चर्चा बढ़ाई भी मत करो, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा. हैव यू नोटिस व्हेन पीपल स्पेंड सो मच टाइम मनी बाइंग थिंग्स दैट दे लाइक, दे डेकोरेट द हाउस एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन दे गो दैट थिंग हैज गॉट नो वैल्यू
1: एंड नो वन एल्स अप्रिशिएट्स. अदर पीपल
0: डोंट चेरिश द वैल्यू,
1: नो नो,
0: दे सी द चीपेस्ट दे कैन गेट,
1: या
0: यू नो व्हाट आई मीन, उसका कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता. तो ठीक है, लेकर सजाना, अपना अच्छा से रहना, खुश रहना, दैट इज फाइन, बट सब कुछ इसमें ना गंवा दे. लाइफ में और बहुत कुछ है दोस्तों, नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग, यू नो,
1: इट मस्ट बी फिल्ड विद लव,
0: इट मस्ट बी फुल्ड विद लव. आई एम सो ग्लैड आई डाउनसाइज्ड, ऑल माय गुडनेस गिव यू सो मच टाइम.
1: या

देखिए दोस्तों, कहते हैं कि परमात्मा ही सबको देने वाले हैं, ठीक है। जो लोग दूसरों को देते हैं उन्हें भी परमात्मा ने ही दिया है। इसलिए किसी को कभी कुछ देना तो यह अहंकार मत करना कि मैं दे रहा हूँ, ओके। बिकॉज आप दे नहीं रहे हो, भगवान ने आपको दिया है उनको देने के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखे दोस्तों। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस गीत को। थोड़ा अजय देवगन और टब्बू कुमार सानू का याग्निक दोनों की आवाजों में आप सुनेंगे विजय पथ का गाना 1994।

गुड मॉर्निंग है जी, कैसे हैं? मस्त, सब कुछ जबरदस्त। जिंदगी तो मजे में कट रही है ना। देखिए, जिंदगी की खूबसूरती जो है वो इसी में है कि आप इसे मस्ती के साथ जीते रहें। ये 4 दिन की जिंदगानी कुछ ऐसे गुजरनी चाहिए कि इन 4 दिनों का हर एक दिन हमारी बीती हुई उम्र के 100 दिनों पर भारी पड़े, है ना। तो बची हुई जितनी भी हमारी आपकी एज है उसे मस्ती में, मजाक में, हंसते खेलते गुजार दीजिए। स्ट्रेस और सीरियसनेस जो है इसे जिंदगी से आउट करिए। और भाई, नई सुबह है, नया मौका है, नई जिंदगी है, नया एहसास है, और इस नए एहसास नई जिंदगी के साथ एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM पर इट हैपेंस के साथ। सो चलिए भाई, 7 तो बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त है, तो इस 7 की खूबसूरती को जरा और निखारते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। भाई, 2 घंटे हमारा आपका साथ रहने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा। गाने भी जबरदस्त हैं, बातें तो होती जबरदस्त हैं जिनके साथ मॉर्निंग बन जाती है। तो उठाइए अपनी कॉफी का प्याला और आ जाइए हमारे साथ आज की मॉर्निंग की बेहतरीन शुरुआत के लिए। और चलिए, अभी आपको आगे लेकर चल रही हूँ इस ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ रहिए इट हैपेंस में, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। सताक्षी है आपके साथ इट हैपेंस में। और जी देखिए, दिन की शुरुआत तो मतलब हो गई, हम भी आ गए आपसे मिलने के लिए, लेकिन अभी कुछ लोग जरा इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब सताक्षी विश करेगी उन्हें। तो भाई लीजिए, आपका इंतजार बिल्कुल खत्म, क्योंकि हम अब उनको विश करने जा रहे हैं जिनका आज का दिन स्पेशल है। तो भाई आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप को जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। मस्त रहिए, जिंदगी में जबरदस्त रहिए। आज जो खुशियां हैं ना, और जो खुशियां आज मिलने वाली हैं आपको, वो इतनी ज्यादा हो कि उनका असर पूरे साल रहे, और हर एक खुशी जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में हर एक दिन आती रहे पूरे साल। और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी का दिन, शादी की सालगिरह, बहुत मुबारक। और देखिए, कुछ भी हो जाए ना, इंसान के रिश्ते की सही परीक्षा, सही एग्जाम तब होता है जब जिंदगी का टफ टाइम आता है। तो मुश्किल वक्त में कभी भी एक दूसरे से ना तो नाराज होइएगा, ना एक दूसरे का साथ छोड़िएगा। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए प्ले कर रही हूँ ये अगला ट्रैक, इंजॉय कीजिए और मेरे साथ इंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

पानी को कभी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की है? जितना मजबूती से पकड़ेंगे, जितना तेज मुट्ठी बंद करेंगे, वो उतनी तेजी से आपके हाथ से फिसल जाता है। और अगर उसी मुट्ठी को आप खुला छोड़ दें, अगर हाथ में पानी थोड़ा सा भर के आप उसे फ्री छोड़ दें, तो वही पानी आपके हाथ में ठहर जाता है। जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जितना आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप जिंदगी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, लोग, सिचुएशन और जिंदगी आपके हाथ से उतनी ही तेजी से निकलती है। क्यों ना आप देखते हैं ना, कुछ चीजों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और वो चीजें आपके हाथ नहीं आ रही, या आपके हाथ से सिचुएशन, चीजें, लोग फिसलते चले जा रहे हैं। आप जब उन्हीं चीजों को होल्ड करके रखते हैं तो वो फिसलते रहते हैं, लेकिन जब आप अपना पकड़ उन पर से ढीली कर देते हैं तो वही चीजें बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं, वही लोग आपके पास थमने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ज्यादा सख्ती या ज्यादा तेज पकड़ चीजों को, लोगों को हमसे दूर कर देती है। ठीक है जी, तो हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर चीज पर कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते, सिर्फ खुद को परेशान करेंगे और कुछ भी नहीं। आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके आसपास लोग ना हो तो आप क्या करेंगे? परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर कुछ देर उन्हें उनके आसपास लोगों का मजूम दिखाई ना पड़े, लोगों की भीड़ ना दिखाई पड़े या लोग उनके आसपास ना हो, थोड़ी देर में वो अकेलापन फील करने लगते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, अगर मेरे आसपास लोग ना भी हों, घंटों ना हों, तो मैं अपना वक्त अपने गार्डन को देख के, अगर ठंड का मौसम है तो सूरज के साथ, अगर रात का मौसम है तो अपने चांद के साथ, सितारों को देखते हुए मैं गुजार सकती हूँ यार, बहुत सारा वक्त गुजार सकती हूँ। एक हाथ में बढ़िया सा चाय या कॉफी का प्याला हो और शांति हो, सुकून हो, अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा हो, ना मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा बहुत देर तक कि मेरे आसपास कौन है कौन नहीं है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, जब आप खुद के साथ बढ़िया फील करना सीख जाते हैं, आपको खुद की कंपनी में मजा आने लगता है, आप खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कौन है कौन नहीं है, या कुछ कुछ देर में लोग आपसे बात कर रहे हैं, कुछ कुछ देर में लोग आपसे पूछ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ भाई, कुछ लोगों को तब भी फर्क नहीं पड़ता अगर उनके हाथ में फोन हो, मोबाइल फोन। तो हम यहाँ पर मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए आपके साथ गुजारे वक्त की बात कर रहे हैं, जो नेचर के साथ, जो अपनेपन के साथ आप गुजारते हैं, है ना। फोन के साथ तो फिर आपको शायद दुनिया के ना होने का सालों फर्क ना पड़े, उसकी बात नहीं है। एक और ट्रक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को मेरे साथ।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane,
3: Queensland. जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है, ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

0: भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: गानों की हैट्रिक आप एंजॉय करें सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक के इस अगले ट्रैक की ओर।
2: लपका झपका लपका झपका लपका झपका।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आप हर इंसान के लिए अलग हैं। किसी के लिए आप बहुत चुप हैं तो किसी के लिए आप चुप ही नहीं होते। किसी को सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ याद रहती हैं और किसी को वो पल जब आपने दूर जाना चुना। किसी की कहानी में आप हीरो हैं तो किसी की कहानी में आप बहुत बड़े विलेन हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आप सिर्फ एक नाम हैं जो शायद अब बहुतों को याद भी ना हो। भाई साहब, आप एक इंसान नहीं हैं, आप एक ही इंसान के अलग अलग वर्जन्स हैं जिन्हें हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से देखता है। जी हाँ, उनके थिंकिंग के हिसाब से, उनके परसेप्शन के हिसाब से और उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको देखते हैं और जज करते हैं। तो फिर क्यों लगे हुए हैं हर किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए, हर किसी को खुश करने के लिए? आप कितना भी कर लीजिए, किसी ना किसी की नज़र में आप हमेशा बुरे रहेंगे ही। इसलिए दूसरों को खुश करना बंद कीजिए और अपनी खुशी का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, सुधाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

लोगों ने मुझ में इतनी खामियां निकाल दी हैं, लोगों ने मुझ में इतनी खामियां निकाल दी हैं कि अब सिर्फ मुझ में खूबियां ही बची हैं। आय हाय, आय हाय, आय हाय, मतलब इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और ये आप उनको जरूर सुनाइए आज सुबह, जब भी आप उनसे मिलें, जो यार हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं। जी हाँ, बहुएं अपनी सासू माँ को, है ना, सासें अपने दामाद को, एम्प्लॉयज अपने बॉस को, हमेशा जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने बताइए कि भाई बहुत हो गया, सबने मिलकर खामियां निकाली, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ पिंच करते रहे, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। देखो सब चीजें तो बाहर निकल गई ना, अब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबियां बची हैं, तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना जी। इसीलिए कहती हूँ ना कि जो लोग भी आपको कुछ कहते हैं, जो लोग आते जाते कमेंट पास करते हैं, जो लोग आपको पिंच करते हैं, आपको उकसाते हैं, उन सब में भलाई है, पेशेंस रखिए। आप निखर रहे हैं बॉस, निखर रहे हैं ना, उनको करने दीजिए उनका काम, आप सिर्फ खुद पर काम करते रहिए। और देखिए, आप खूबियां खूबियां बची हैं, तो निकालिए अपनी खूबियों को भी बाहर, और सुनते रहिए टॉप फ्रेंड्स रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनी